जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

जवानी, पनगट काल से लो चली कहानी हो। झटपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी, अनगिन साल से है।